मुंड पकड़ेगा भांजा बादशाह रे जैसे मछली ने खीर भेजी और क्या तो पकड़े सर।

0: क्या बात है माजी?
1: कुछ नहीं, जिसे तुम मिलने आया वो घर पे नहीं बेटा।
0: लेकिन आप,
2: हेलो रहीम, कैसी हो माँ?
1: तेरा दोस्त आ गया।
2: माँ
0: क्या बात है यार, माजी इतनी परेशान क्यों है?
2: क्या बताऊं, बचपन में मेरा छोटा भाई खो गया था। जब जब उसकी याद आती है मां रोने लगती है।
0: क्या उसे ढूंढा नहीं?
2: बहुत ढूंढा, कहां कहां नहीं गए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तू अपना हिस्सा लेने आया है ना?
0: हिस्सा तो मैं कभी भी ले लूंगा, लेकिन न जाने क्यों तुम्हारी मां का रोना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। माँ जी, आपको अपना खोया हुआ बेटा चाहिए ना?
1: हाँ बेटा।
0: मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। ये मेरा ईमान है, आप चलेंगे मेरे साथ?
1: अपने खोए हुए बेटे को पाने के लिए मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूं।